0: ये को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अच्छे
1: Parliament proceedings disrupted as opposition demands debate on police action against protesters and demand education minister's resignation over neat paper leak issue. Government says it is ready for debate, accuses Congress of imposing conditions.

0: Amid the continuing parliamentary standoff over a neat paper leak, NDA and India Bloc MPs engaged in a direct face-off. Now, the first 3 days of the monsoon session have already been washed out, and today too, both houses have been hit by repeated adjournments. The face-off unfolded within the parliament premises. India Bloc MPs staged a protest demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan over the neat paper leak.
1: ये अगर तैयार होते तो उसी दिन जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी. फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? दो दिन, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन तुमने लाठी चार्ज करके लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए. कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने? और तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा. आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया.
0: Meanwhile, NDA parliamentarians held a counter-protest, accusing the opposition of refusing to allow a discussion in parliament and of spreading fake news on the issue.
2: कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है.
0: A poster from the hands of BJP's Arun Singh. With MPs from both camps standing face to face, Parliament security personnel stepped in and formed a human chain to keep the two groups apart. In the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the neat paper leak in both houses of Parliament. He said the debate can be held in any format, on any date, and for as long as the opposition wants. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi sent out a big message to the youth of the country. In a post on social media platform X, Prime Minister Modi said that the government has decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those who were involved in the paper leak. The Prime Minister directed all the